0: नानक गैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
1: जो जो रुसरणावनी आवे बारों बार जूठे जूठे मुख वसै निधन तो होई ख्वार।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज किह जै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गण जै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत चेतना है तो चेत लै निस दिन मह प्राणी शिन शिन औद बेहात है फूट घट ज्यों पानी हर गुण काहे न गावहे मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मरण पछाना अज हूँ कछ बिगड़यो नहीं जो प्रभु गुण गावै कहो नानक तेह भाजन ते निरपै पद पावै दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रा मेरा हे बिनंती सुन प्रा मेरे देहे नाम कर अपने चेरे सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कुमाते सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमी नूर अरसा कुरसहा तुरिठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही सब नांदा सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ
ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਮਾਨ ਰੇ

अटल भयो तू जाकै सिमरन, हर निरभय पद पाया। दुख हरता एह बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद, गज ग्रहा ते छूटा।

नानक कहत चेत चिंता मन तैपि उतर है पारा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा।

0: पौड़े वड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर माण माता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिस जगता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगियां या

जियां अंदर जियो सबकी जान ला, सब किश तेरे वस तेरा कर भला, तेरा घर आनंद वधाई तुद कर, माण महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला पर।

मर्तबा रंग बिरंग ने कहना जपन करतबा जी अंदर जी सब की जान ला सब की तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद तुद कर मान मत्ता ते जपन आप जर सर्ब कला भरपूर दिस जत कथा

0: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत देसरा दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगियाईया बुरियाईया वाज धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया
1: जय मसकत का।

शरीर स्वस्थ कीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव। निमणियों के मां नितानियों के तान गुरु गरीब निवास

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाई गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार का शाड कै गहयो तुहारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार का शाड कै गहयो तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रह हर नाले रह तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लों समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रह हर नाले सच साहिबा क्या नाही घर तेरा घरता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जनिशा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां हे वडियाइया कह नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ
तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहा वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पय सर से, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैना जोग कीतो ई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयो ई। तरस पया मेरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरे। वा

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लय त्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी किस्सा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। प्रथम

पैजो पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा।

सोरठ महला नौवा मन रे प्रभु की शरण विचारो जेह सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उर तारो मन रे प्रभु की शरण विचारो जेह सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल पयो तू जाके सिमरन अर निरपह पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा मेहमा नाम कहलो वरना

हमें आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सोत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसाह। सजन सच्चा पातशाह, सिर सांदे

प्रीतम जान लिहो मन माही। अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नहीं। प्रीतम जान लिहो मन माही। अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नहीं। रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस किरे। बेपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जा

पौड़ी अपने आप साजी अपने रचो ना दोई कुदर साजी है करासन डठो जाओ दाता करता अब तू तुस देवे करे पसा तू जोनो ही सबसे दे लैसे जिंद को आओ

0: सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूर रे ओ सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्ब गुण दान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान, कमन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ, अकल कला है प्रभ सर्ब को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार,
1: निरंकार आकार अशल पूरन अविनाशी, हर खवन अनंतरो निर्मल बेगासी, गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी, जांको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर पियो, हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो तेरे हो, तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर पियो, हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो तेरे हो।
2: सत सत हर सत सत सते सत पणिया, दूसर आनन अवर पुरख पौरा तन सुनिया, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जे रसन चाख्यो तेह जन तृप्त अगाए, जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संगत प्यार, हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार, जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संगत प्यार, हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार।
3: सच सभा दीवान सच सच्चे पहतरियो, सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो, सच सिरजो संसार आप भुल न भुलो, रतन नाम अपार कीम न भवे अमलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए, हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बोर फिर जोन न आए, कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन में दुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर, तेरे कीम न परिए ब्रह्मादक संकाद ਸੇਹ ਗੁਣਮਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਗਉ ਗਿਉ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਵ ਰਹੋ ਸਮਾਏ, ਜੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ।
4: ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾ, ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਨਾ, ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ, ਜਿਹ ਲਗ ਪੌਜਲ ਤਰਨਾ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ, ਭਗਤ ਤੇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।
5: ਤੇਨ ਪਵਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸੋਈ, ਆਪਣ ਸਰਸ ਕਿਉ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰ ਨਰ, ਗਨ ਗੰਧਰਬ ਖੁਜੰਤ ਫਿਰੇ, ਅਵਿਨਾਸੇ ਚਲ ਜੋਨੀ ਸੰਭੋ, ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਏ, ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ, ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ।
6: ਜਾਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ, ਫਿਰਤ ਸਕਲ ਜੁਗ, ਕਬਹੂ ਕੋ ਕੋਹੂ ਪਾਵੇ, ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕੋ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਾਕੋ ਸੇਵ ਮੁਨ ਗਏ, ਨਾ ਤੋ ਜਾਤ ਕਾ ਬਲਾਸ ਕੋ, ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਾਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਾਪ, ਜਟਾ ਜੂਠ ਭੇਖ ਕੀਏ, ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾ

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड़ सिमर सुख दाता।

पुले सुत दारा सेओ प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

सतगुर कै बल जाई, हालत पालत प्रभ दोवै सवारे। हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। हालत पालत प्रभ दोवै सवारे। हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा,

राम कहे से तंबर स्वामी सच में से साच रहे सब को सच संभावे रे कहे रहे आप हर पूरा नाम देवस नाए लय प्रास जाए नानक ताओ मुखंतर पाहे जुज में जोर चली चंद्रावन कान कृष्ण जात भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पढ़े गुणे तीन चार विचार।

0: पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ियाई आपे ही कर्म कराइंदा वड़ा वड़ा बन में इतनी सिरे सिर धंधे लाइंदा नदर पट्ठी जय करे सुल्ताना काहो कराइंदा धर्मंगन पिखना पाइंदा धर्मंगन पिखना पाइंदा।
1: राम कली महला तीजा आनंद।